का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरी तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। निर्धन जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है 24/7, ये टेलीफोन नंबर बराबर होता है 032-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। हमारा वेबसाइट radiosbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और दुनिया के कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त बरानियों के लिए।

0: घबरानियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का। चले अगला भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहे।
1: अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्य बनाने वाले भगवान की समृद्धि दिलाते रहो।

गोपाल जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए अब की बार सेन राम बरन की आवाज में ये सुंदर राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सेन रामबरन की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। एक भजन प्रोग्राम में होगा और वो भी सोनू निगम की आवाज में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिओम शरण जी की ओर। बहुत सी सुनने वाले होते हैं जो हरिओम शरण जी के आवास में भजन काफी पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर और अति सुंदर भजन बस हरिओम शरण जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में श्री हनुमान चालीसा पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अबकी बार बजरंग बान की ओर। उसके बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तो चले मिलकर बजरंग बान को सुनते हैं आज के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।
1: भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी है, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

0: सुंदर सा बजरंग बान बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शनिवार का दिन 20 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रवीन। 9:00 प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है, 3 मिनटन ओवर 9 स्टूडियो टाइट हो चुका है। सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं, सभी को वेलकम जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से उत्तराखंड शहर से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। लाइव फनआउट एट हार्ट फॉर नीदरलैंड फनआउट मिड नीदरलैंड रेडियो SBS का ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड भी पेश किया जा रहा है। आज भी काफी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। तो यहां से तुरंत हम आपको ले चलेंगे उड़ानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम की ओर, जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। तो सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। तो चले यहां से प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आईडी मुकेश एंड लता जी की आवाज में फिल्म हरियाली और रास्ता, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। अल्लाह जाने क्या हो?

रेडियो SBS के जरिए माइटी मुकेश और खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। हरियाली और रास्ता फिल्म का नाम, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और लाइव शेयर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। चमकता हुआ कि ही सितारा रेडियो SBS संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम आज और कल। मोहम्मद रफी

रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज और कल फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। फरमाइश इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामों का जो आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में आपकी सभी कामों का अच्छे पेश किया जा रहा है। हर एक इंफॉर्मेशन

तार द्वारा, मेल द्वारा या तो रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप ले सकते हैं। 24 पर दख रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर, मेल और हमारा रेडियो SBS का ऐप जो है 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है। हर एक समय पर तमाम इन्फो आप ले सकते हैं। शनिवार का दिन है, 20 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और सुनने वालों, आपको मालूम होना चाहिए कि आज रात्रि में 2 जबरदस्त फुटबॉल मुकाबला होने वाले हैं। सबसे पहले रात्रि में 7 बजे नीदरलैंड और स्वीडन का मुकाबला होने वाले हैं। नीदरलैंड और स्वीडन का फुटबॉल खेल होने वाले हैं। और उसके बाद रात्रि में 10 बजे डॉयचलैंड और E4 क्विस्ट का मुकाबला होगा। तो काफी सुनने वालों भी ऐप द्वारा, तार द्वारा आज सुबह खबर गया है कि घर पर रहेंगे और फुटबॉल देखने वाले हैं। और आपको खबर किया जा रहा है मुस्कुराता दुकान जो तनहा शहर के अंदर में है, सबसे बड़ा दुकान हॉलैंड देश के अंदर में जो होता है, जहां पर इंडिया भारत देश का कपड़े आप सस्ती दामों में खरीद सकते हैं। कपड़े के साथ गहने, दुल्हा दुल्हन के लिए हर एक कपड़े और हर एक सामान यहां पर आप खरीद सकते हैं सस्ती दामों में। और स्पेशल इस वीकेंड जबकि जबरदस्त फुटबॉल मुकाबला होने वाले है और इन दिनों वेका फुटबॉल चल रहा है, वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल चल रहा है, तो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा कोर्टिंग कटौती आपको दिया जा रहा है मुस्कुराता दुकान के पास में। तो जरूर यहां पर आप तशरीफ फरमाइए, कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 डेनहाग शहर के अंदर में। चले प्रोग्राम में गाना जो पेश होगा मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: रेडियो SBS की जरिए फिल्म आमने सामने, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। अभी आपने सुना ये खास गाना जो पेश की गई है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है और रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गीता दत्त और मोहम्मद रफी प्रोग्राम में आर पार फिल्म का नाम
1: आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म आपके दीवाने, किशोर कुमार मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है तो सुपर मार्केटों को दवा के पास में जबरदस्त आन बीडिंग रखा गया है। अभी खबर मिला है कि सूरीनाम से खुरुंत यहाँ पर ताजे से ताजे अंदर आया है और आपको सस्ती दामों में दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ पर आप तशरीफ फरमाइए। प्रिंस बर्नार्ड प्लेन नंबर 54 यूट्रेख्त जुइलन में जो है सुपरमार्केट टोको दवाग आनबीडिंग ही आनबीडिंग से फायदा उठाइए। दुकान के अंदर में ढेर सा सामान होते हैं जिस पर दाम बिल्कुल गिराया गया है, तो जाकर आज शनिवार की रोज जरूर यहां पर आप तशरीफ फरमाइए। ग्रेटस पार्किंग है और आपको खबर किया जा रहा है हर रविवार भी दुकान खुला रहता है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा किशोर कुमार की आवाज में फिल्म याराना, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है छूकर मेरे मन को। The best selections, हमेशा संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS की जरिए। 40 साल से ज्यादा रेडियो SBS का प्रोग्राम शहर उत्तर से बस पेश किया जा

यारा फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। असरों मीठे सुनकर आज की सुबह की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में सुनकर और काफी पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। किशोर कुमार के बाद मुकेश एंड लता होगा प्रोग्राम में। मुकेश और लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज का मौसम भी काफी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं और ये मौसम जो है आने वाले दिनों भी इसी तरह से रहेगा और आने वाले दिनों भी कहीं कहीं फिरन देर तक खराब होने वाले हैं। सभी सुनने वालों को शुभ दिन, शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बहुत से सुनने वालों होते हैं दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को भी सुनते हैं। DAB प्लस रेडियो द्वारा भी काफी सुनने वालों इन दिनों रेडियो SBS का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं मौतकार में अपना घरों में अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में। रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है हमेशा आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार प्रोग्राम में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आई द फिल्म परवाना, परवाना फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार द मैन विद ए क्वीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई सिमटी सी शर्माई सी परवाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए सुनने वालों हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कल इतवार है 21 तारीख जून और कल पिता दिवस का दिन है हाँ फादर डे का दिन है मत भूलना बस आप सभी सुनने वालों को याद दिलाया जा रहा है कि कल पिता दिवस का दिन फादर डे का दिन है कल इतवार 21 तारीख जून चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम होगा तकदीर उसी फिल्म का ये गाना खासतौर पर कल जबकि पिता दिवस का दिन है

रेडियो SBS की जरिए फिल्म धर्मात्मा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। मुकेश और कंचन के आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। 10:07 वाइट हो चुका है। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में, फिल्म धूल का फूल, उसी फिल्म से ये गाना महेंद्र कपूर और लता जी की।

रेडियो SBS की जरिए महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म धूल का फूल, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, 20 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आज। नीदरलैंड और स्वीडन का फुटबॉल मुकाबला होने वाले हैं, वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल जो इन दिनों चल रहा है, तो आज रात्रि में 7 बजे नीदरलैंड और स्वीडन का खेल होगा। उसके बाद रात्रि में 10 के वक्त डच्चलैंड और ईफोर कुस्ट

बड़े है दिल की काले, दिल देखे देखो फिल्म का गाना बस पेश की गई मोहम्मद रफी एंड आशा जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि इस साल मिलन समर फेस्टिवल होगा 21, 22 एंड 23 अगस्तस सुइडरपार्क डेन हाग शहर के अंदर में। क्राम फरहूर के लिए या तो टिकट के लिए जरूर आप जाइए वेबसाइट milansummerfestival.nl। उसी वेबसाइट पर आप जाइए क्राम फरहूर के लिए या तो टिकट जब भी आप खरीदना चाहेंगे। मिलन समर फेस्टिवल दिस यार 21, 22 एंड 23 अगस्तस होगा सुइडरपार्क डेन हाग में। मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, जाने चमन शोला बदन। मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। मुकेश एंड लता प्रोग्राम में होगा।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 7 मिनटों ओवर हाफ एल्फ स्टूडियो टाइट हो चुका है। चले गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म भीगी पलके

0: रेडियो SBS की जरिए फिल्म भीगी पलके है, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी और खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। काफी सुनने वालों बस रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर रहे हैं, सभी को वेलकम और शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के ऐप के लिए। शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है, गर्मी सा मौसम भी, गर्मी सा वीकेंड होने वाले हैं। किशोर एंड लता प्रोग्राम में आपकी कसम फिल्म का रहा।
1: सुना
2: कुछ हुआ क्या
1: अभी तो नहीं।

0: रेडियो SBS की जरिए फिल्म आपकी कसम किशोर एंड लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गीत किशोर एंड आशा जी की आवाज में पेश होगा और गाना का बोल है दिल मेरा खो गया। खूबसूरत सुहाना मौसम है, गर्मी सा मौसम और खूबसूरत नख्मे है। रेडियो SBS की जरिए
1: जाने दो प्यार अब हो गया।

0: हो गया।
1: हो जाने दो, दिल मेरा खो गया।
2: किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई सीमा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। 10 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे तकरीबन 11 बजे तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। चलिए गाना फिल्म सनम तेरी कसम किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: कसम तेरी कसम गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अक्सरों भी थे गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में 11 बजे में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना पेश होगा लेकिन मैं भूलना कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर अनाशा जी की आवाज में, किशोर अनाशा जी की आवाज में फिल्म जवानी दीवानी।
1: ए आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।
1: ए हे।
0: गाना के बाद प्रोग्राम में न्यूज या कहिए रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और

Ka Yagnika Ure, Udit Narayan Ki Avans Meye, Janabas Programbe, Piski Gaye, Aap Sabhi, Aure Sabhi, Sinevalu Ki Seva Me. चले अब की बार सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है हिम्मतवार।

इसके जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस में इसके जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले आपके बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लाइव की जरिए ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस का। कुमार सानू एंड अलका।

पुदीत नारायण और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा रखते हैं कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई हम आपको ले चलेंगे। अब की बार हम किसी से कम नहीं है फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है, अनुराधा पोटवाल और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और अनुराधा पोर्टवल की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम हम तुम्हारे हैं सनम।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई हम तुम्हारे है सनम फिल्म का नाम अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज में एक गाना पेश किया।

een hele goede middag. Bas Bies kia ja raha hai. Sunny waar ka din hai. To matlab hote hai local time ka program. Bas yahan se aap sabhi sunne walon ki seva mein pesh kiya ja raha hai jo takriban 2 baje tak aap sabhi sunne walon ki seva mein bas pesh kiya jayegi. To chale aaj ki local time प्रोग्राम का खास तौर पर पहला गाना जो पेश किया जा रहा है उमर की आवाज में जरूर और जरूर सुनते ही रहना ये खास गाना।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। उम्र के बाद मरहूम नदीम खान प्रोग्राम में होगा।

जान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए जानी ओ जानी। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। लकी सिंह अब की बार प्रोग्राम में होगा। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है लकी सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए लकी सिंह के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। हाँ, एक रीमेक स्टाइल का गाना होगा तो जरूर आप सुनते ही रहना। पुरानी फिल्म का गीत है, कुछ अलग म्यूजिक रीमेक स्टाइल में।

0: Waar een ander stopt, gaan wij verder. Dit is Radio SBS, jouw nummer 1 radiostation.
1: चले अब की बार मिस्टर राहुल की ओर हम आपको ले चलते हैं। लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो एसबीएस की जरिए।

0: सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड विश किया जा रहा है, हैव अ नाइस वीकेंड। चले प्रोग्राम में जूनियर्स लाइव, गाना जो आप सुनेंगे मिस्टर रकीब के आवाज में।
1: अरे जियारा में चमके, अरे थम थम कोई बिजुरिया।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रखीब के आवाज में गाना भी आपने सुना चले प्रोग्राम में मार्सेल फान ड्यूरन। हाँ, आते हैं अब की बार हमारे उत्तराखंड शहर का मशहूर गाने वाला

हमारे यूट्रेक शहर का मशहूर गाने वाला मार्सेल फन ब्यूरन ने उसी मशहूर गाने वाला की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में हम आपको ले चलेंगे मरहूम नदीम खान की ओर। खोरा कागज था ये मन मेरा फिल्म आराधना का गीत ओरिजिनल किशोर

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। सभी सुनने वालों जो अपना अपना रिएक्शंस देते हैं, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, लोकल टाइम का प्रोग्राम रहेगा।

0: is Radio SBS.
1: शुक्रवार इसी तरह से अभी आपने सुना सतीश के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए अब की बार एक और मशहूर गाने वाला मीका सुक्खू चटनी गाना लेकर के।

0: चटनी मिक्स आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आपकी बार विनेश आरजी की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है फाया पेपरे।
1: मैं नाम है विनेश आरजी एंड यू लिसन टू रेडियो SBS।

आवाज में ये गाना अब उस प्रोग्राम में पेश की गई है। रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। चलिए अब की बार ईबो की ओर हम आपको ले चलते हैं।

इबो की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई लोकल टाइम की प्रोग्राम में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर

सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। सुधीर प्रोग्राम में

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हम आपको ले चलते हैं उमर की ओर और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है किस लिए मैंने प्यार किया।

उम्र की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में रेमोन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है मोहन की मुरलिया बाजे।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। तो चलिए अब की बार ये गाना मीका सुखू और तचना की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आज के लोकल टाइम की प्रोग्राम में एक आखिरी लोकल गीत पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। आप सभी सुनने वालों को बाकी का दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। बैठा आपका खिदमत गुजार अबीन जो आप सभी सुनने वालों को सेवा और खिदमत किया।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ों दूर सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस और द फिल्म आजा नचले। And now the film An Evening in Paris comes to Sangha Do Sharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इस गजोंगा दोर जगजीत सिंह एंड कुमार आउट द फिल्म प्रेम गीत एंड गजोंगा दोर किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कोम्त प्यार लो।

कैसा है चिनाब का, इस गजोंगे दौर किशोर कुमार। En uit de film Chalti Karam Gaadi komt gezongen door Kishore Kumar weer. Ik lerki bhigi bhagi si.

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार शानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे, मैं उम्र गुजार दूं।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ऐसा है द फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitaan Killer via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Samchakaro, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

कुमारदू फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Jurwa 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे सुसंग दोस्ती बेन बेन फॉर्मत लीजिए इन प्रोग्रामा गीत तुम कल है इस सुसंग दो अरिजीत सिंह इट कम टू द फिल्म तड़फ एंड इट इज तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया है।

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदोर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण. चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयु द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदोर अलका याचिनिक एंड अभिजीत. चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान. चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन het programma Gietonke Leher via Radio SBS.